0: रेडियो एनआरएन 99.1
1: सुरक्षित भविष्य को लागी जीवन बीमा गरौं। जीवन बीमा का लागी राष्ट्रीय जीवन बीमा कंपनी नै रोजौं। न्यून बीमा शुल्क में अधिक बोनस दर रहेको नेपाल सरकार को पूर्ण स्वामित्व प्राप्त एकमात्र जीवन बीमा कंपनी बीमा को क्षेत्र में विश्वसनीय नाम राष्ट्रीय जीवन बीमा कंपनी साबिक को राष्ट्रीय बीमा संस्थान प्रधान कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौं।

सदियों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM।

0: ayaw kasi yun, hindi dinira ba.
1: Mm-hmm, ay? ठीक सलामी लाया जी आज बने निके ने मीठे गीत सुनने पाऊँ सम तो पाएगा।

0: हजुरको रेडियो 102.1 MHz।
1: लौ आयो है क्वालिटीमा नम्बर 1 दाममा सबैभन्दा कम
2: ओ प्रकाश कपूर।

0: हजुरको आवाज हजुरकै साथ यो हो हजुरको रेडियो 102.1 MHz।
1: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा उनसे नाराज बैठे हैं। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से।

ससुरालीमा घोना झार न लगाओ कान्छी सालीमा निष्ठुरी भइदैन दिदी बहिनी एउटै घर जाइदैन ससुरालीमा भुना झार न लगाओ कान्छी सालीमा।

सालिमा भोना सार ना लाजाओ कांची सालिमा गर्या छाओ के गरना सालिया फैराजी छे बेगरना ससुरालिमा भोना सार ना लगाओ कांची सालिमा हो भोना सार ना लगाओ कांची सालिमा।

0: था के भाने को सिर में सिर खाली सा ससुराली मा खल खल भुना चार नलगाओ कांची साली मा मेरो नाई पाली था तिम्रै लागी यो सिरा खाली था ससुराली मा खल खल भुना चार नलगाओ कांची साली मा
1: अब लास्ट है तो विक्रम जी मनोज जी
2: हाँ हाँ